विशेष राग मधुकौंस अपेक्षाकृत नया राग है और अत्यंत प्रभावशाली वातावरण बनाने के कारण कम समय में ही पर्याप्त प्रचलन में आ गया है। गंधार कोमल से मध्यम तीव्र का लगाव इस राग में व्यग्रता का वातावरण पैदा करता है।

जो वीरानी की व्यग्रता को दर्शाता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए इस राग में विरह रस की बंदिशें अधिक उपयुक्त होती हैं। यह मींड प्रधान राग है। गुणीजन इस राग को राग मधुवंती और राग मालकोंस का मिश्रण मानते हैं। सा ग म प इन स्वरों से मधुवंती का स्वरूप दिखता है। और गंधार कोमल से षडज पर आते समय गंधार कोमल को दीर्घ रखकर मींड के साथ षडज पर आते हैं, जिसमें कौंस का रागांग झलकता है।

इस राग को तीनों सप्तकों में स्वतंत्र पूर्वक विस्तार किया जा सकता है। यह स्वर संगतिया राग मधुकोंस का रूप दर्शाती है। सा ग सा ग म ग सा सा ग म प